तेरा मर्तबा रंग प्रंग अनेक न जपन करतबा जिया अंदर जियो सब की जान ला सब किस तेरा बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर।

बिन से पाप घने रे, बिन से पाप घने रे, सचिया बादशाह बिन से पाप घने रे, पैसे पड़े तो मुग दे कोई तारे वाहिगुरु, पैसे पड़े

ते सब तेरी वाड़ी आई कोई ना वो ना जाने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तत्र चक्रवर्ती जतार चक्र भुगते स्वयंब सुबंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते देख तेग फतेह नुसरत बेदरंग याप तज आज नानक गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुगज सहाय दरबार उन्मंत्र दरबारा सत कण वसे निरंकारा लक्ष्मी खड़े तुमरे दरबारा सर्व देवते के नमस्कारा दोहरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूरन गुर आता जग मग जोत बेराज रही श्री अब

जय गुरु गुरु निवास अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। आप जी के पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दबादियाँ हाजरिया बढ़ते हुए कीर्तन दे सत्खाओ संगत और बिंत महाजर जिस खजाने विच महाज सो सो खजाने भरपुर करना नाम दान गुरसिखी वाला जुगना दे हर हफ्ता बख्शनी आसा मनसा संपूर्ण करनी यात्रा सफली करनी।

जानी बखानी ना है असन प्रपंच मन भूल अनियत है। भूम के बसैयता है भूचरी के जैया कह नब के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैयता है बांदरी के जैया कह आदि से फिरैया ते तबूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि का हद जग आग के फचैया सो चकोर सम मानी है। सूरज सिवैयता है कौल की बटाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि

ना चत फिरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है। चंद्रमा शीतल न सूरज से तपत तेज इंद्र सोन राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक से भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु कित वेद और पुराण कित सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार कित

जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीप और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दार से दिल्ली सर द्रोजोधन से मान धारी भोग भोग भूम अत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप ची कपट वेश पोसती अनेक दानी वावत है। शीश कहो कहा भयो मल जो पे काढ़त अनेक डंड सोत न डंडौत अस डांग अथ तीस कहो कहा भयो रोगी जो पे डार्यो रहे उर्द मुख मारे तेना मुंड ने हरायो आदिश कहो कामना दीन सदा दामना प्रभी ने एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश कहो। शीश पट कत जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक साऊ आंख को चरैया फल फूल को भसैया तथा बन को भ्रमैया और दूसरो न बुक साऊ कहा भयो भेड़ जो खसत शीश वृक्ष सुमाटी को पछैया बोल पूछ लीज जो कुसाऊ कामना दीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक साऊ नाचोई करत मोर

करता करीम सोई रस करहिम उई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही किसेव सब ही कुकुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज उई मन सब एक पय अनेको भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक

जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनुक फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कित कछ मच कित उनको करत भच, कित अच वच हो सच उड़ जाएंगे। कित नभ बीच अच पच को करेंगे भज, कित कुप्रत

जैसे तेज लीन ताहि दयो भज सब ताहि मैं समाहिंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है कित गंग बासी कित मदीना मकानी वासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को फरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड्डे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चौहार बूझ हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मडली पहारे विदन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब बज हारे पंडित तप

छपिद्या थरे मान भी हो गहूं राज सिंह गहूं राज कन्या कहूं सृष्ट की पृष्ट की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्रसारंग हूं भद्र रूपं कहूं।

अनभूत तेज अंश जगात करता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात बात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं जयन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं बर्ग ब्याद जय रोक शोक नहीं शत्रु साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोक शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साध दुरंत तन सीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमंत कई ऊर्ध मध पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद कई गोक काव कथत कतेव कई कगन होत्र कई बहन हार कई करत कूट मृत को आहार कई करत साग पै पत्र भक्ष नई तदब देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व बरीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीर्थ धर्म कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या बणंत कई करत बांद बांधन विचार नहीं नायक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरम सो भरम कई अकन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदब दास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र तुचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान

जगहों गान गीत कहूं करत सास सिमृत उचार गए भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास गई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पंग प्रजंत नहीं तद्दवता सपायतनांत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तद्दिष्ट देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं भरत बान बहु करत

अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचयंग देवा देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचयंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंप है किन्नर जच्छ जुअंग जय राग न रुंग न रूप न रेख न रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न बात न मात वितंग जय रचयंग छत्रि छत्र चितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाक न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रच्यो दस चार करी नवखंड सच्यो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देवा देवा भेव नरंग नरपाल विपाल करार त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेतज उद भुजंग की ये देवा देव सराध पितंग नखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न प्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंप है किन्नर जाछ जुअंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जाछ भुजंग दिए गज वाज रथादिक पांद गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम काश पताल जलंग रज पावक पौन प्रचंड बली बन जास

नरेख रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सिरंग जय वंदत देवा देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर्ण मतंग अनखंड स्वरूपा।

लो तब ताप करे नहीं नैक कृपा निध पान परे। जय फूकड़ धर्म सबै तज है एक चित्त कृपा निध को जप है ते या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है। एक नाम बिना नहीं कोट वृत्ति इम वेद।

न तात्मात जात है, न पात चिहन वर्ण है, अधिक से कफेक है, सदीव विश्व भरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्व भरण है, जिमे जमान के विके सदीव करम भरम है, अद्वेग है, अभेग है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठौर में विषय खान मानिए। न जंत्र में न तंत्र में।

है न संग है न साथ है न दुख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है।

न चंद्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेग है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है।

न सीध है न सोज है न ग्राम है न गाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न चल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है।

मित्र बालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकांद अघौ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग

नारद आदक वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सभय कर कूट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोध सोध थके महासुर।

को आत्मा स्वरूप है कहाँ सृष्ट को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहूँ सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मरण है।

अष्टाद चमके भूखण दमके अथ तिझमके फूंक फनंग जय जय उसी मैं खासुर मर्दन रमक परदन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण दुजा फरंगण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकार खण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूमा कासल उर्धे दामनी प्रहासन सुछव निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर।

संकटे निवारण धम उदाहरण तेज प्रकार गण धुंध तपे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद गाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होशी शस्त्र प्रकार खण आद अनिल गाद भे चंचलाज खंगी अलग भुजंगी धुंध तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा।

बार जब लोचन मृतन विमोचन सोच विशोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से शुभ्र सुभा से दुष्ट कसे चंचला प्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सीम खा सुर मर्दन आद नाथ का दूर्धंग घंट का विराजय।

चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर प्रत्ये तुम राज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंति दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सीम खासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आदानंगी अगाध गते बृढ़लाज बिहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आदवृते सुर नर प्रतिपारण

रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदन वर्धन बिडाल वदे सरधार विपरखन दुर्जन धरखन लतुल मरखन धरम धुजे धूमराज विदुन संसूर्ण।

करुणानिधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन बीन अनभंजनाद जल दल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम, जय रंग रूप नहीं एक धरम, जय शत्रु मित्र दो एक सार, अच्छा स्वरूप अवचल पार। जानी न जाय जय रूप रेख, कहे बास दास कहे कौन फेक, कहे नाम तास है कवन जात, जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र प्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप, जय चक्र चहन नहीं रंग रूप, जय खेत भेद नहीं कर्म काल, सब जीव जंत की करत पाल। उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप, बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप, जय रूप रेख नहीं रंग राग, अंचिज तेज अनभिजताक। जल थल महीप बंतन दुरंत, जय नेत नेत निषदिन उजरंत, पायो न जाय जय पैर पार, दीनान दुख दहता उदार। कई कोट इंद्र जय पानहार, कई कोट रुद्र जुगिया द्वार, कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत, जय नेत नेत निषदिन उचरंत। त्वा प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल कर, नित संतो पार, गनी मन गारे पच पशु नग नाक नराते, सर्व समय सबको व्रत पार। पोखत है जल मैं थल मैं बल मैं कल के, नहीं करम विचारे दीन दयाल दया नित, दो खंदे खत है।

खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पदमावत वेद गते वेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज करोख रुहान की रोज नटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अंग एव न भेव लख्यो भ्रम स्यो भरमाए। वेद पुराण गतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन्सरी।

लोगन के करता हरता जल मै थल मै फरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगे है अच्छय है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह है काहे को टूलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पदमा पतले है। रोगंते अरसोगंते जल जोगंते वो भांत बचावे शत्रु नेक चलाव दघाव तौ तन एक न लाकन पावे। राखत है अपनो कर

अस्पताल प्रसाद जाच बुजान का सब शरण आवे पाए सके नहीं बार प्रभाहूं को नित ही नित भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो वेद कते बन भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो ते को मन वै जय को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निपान सब बजहारे भेद न पाए सके उन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे याद अनाथ अगाध बेगत वैख जप्यो तिन ही कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे देश फिरो कर बेस्त बोधन के जरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग

पूर्ण प्रकाशी महारूप हूं के राशि है राशि कह के मानी है। जंत्र हूं जात जा की बाप हूं न मायता की पूर्ण प्रभा की सुछटा के अन मानी है। तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है नि जंत्र कह के जानी है। तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के सुध

सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को गुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के सतरण के साल है के मित्रन को पोकत है के वृद्धता की वासी है जो हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है ननर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न बार पार अवार हूँ को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय का वह

0: कृपान कलगीधर स्वामी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज
1: बोले
0: कृपान कलगीधर स्वामी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज
1: बोले।

0: श्लोक महला पहला सच्ची तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लोग सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सरद विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दया खैला करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी शिफ्त सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच चैन सच जो मर जम रहे सो कच निकच महला पहला
1: वडी उड़े जा वडा नाओ वडी उड़े जा सच न्याओ वडी उड़े जा ने चल थाओ वडी उड़े जाने लाओ वडी उड़े बूझे सब पाओ वडी

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्मार पौन विस्मार पानी विस्मार अग्नि खेडे विडाणी विस्मार धरती विस्मार खाणी विस्मार साल गह प्राणी विस्मार संजोग विस्मार विजोग विस्मार भुख विस्मार भोग विस्मार सिफ्त विस्मार साल

पौड़ी बिन सतगुरु के नेरा पाया, बिन सतगुरु के नेरा पाया। सतगुरु विच आप डकन कर प्रगटाक सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त जिन विच बहु चुकाया। उत्तम है विचार है जिन सच्चे सोच।

0: द्वापर तप का सत गर्थवा कल युग रथगन का कूड़ गर्थवा हमला पहला
1: राम कहे से तंबर स्वामी सच में आचे साथ रहे सब कुछ सत्सु।

मथे टिक्का तेल धोती का खाई हथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र भैरव प्रभा स्थान पूजे प्रभा अपाख्या का पुठा।